लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: the system, but it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

0: just smack them back.
1: Yeah.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: In the way to start, this is a matter in the house. Come on.

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

0: रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल जाए।
1: कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जाने।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

देखते तो मोरों के कहाँ देखेंगे। अभी आप कह रहे थे ना, देखा ही नहीं जाता। किस कदर खूबसूरत, ऐसे लगता है जैसे किसी ने धागे से बाकायदा वो कढ़ाई की हुई है, और इतने खूबसूरत शेड, इतने जबरदस्त के इंसान हैरान रह जाता है। और ऐसा थ्रेड, इतना सिल्की थ्रेड तो हम वैसे खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसमें वो नजाफत और लचक। और फिर आप देखें कि किस खूबसूरत तरीके से उसकी आउटलाइन बनाई हुई है, और आउटलाइन के साथ भी शेड्स हैं, और फिर जो पर उठे हुए हैं ये आप देखें कितनी तरतीब के साथ, जैसे किसी ने बाकायदा ट्रिमिंग की हुई है। ये खुद ही बन गए, खुद नहीं बन सकते। अल्लाह ताला ने परिंदों को तो खुद ही दे दिया, खुद ही पहना दिया, हमें अकल दी और क्या कहा, इस्तेमाल करो और अपने लिए खूबसूरत लिबास बना लो। आप देखेंगे जब बहुत सारे लोग ऐसी कढ़ाई वगैरह करते हैं तो उनकी, यानी कढ़ाई वाले कपड़े पहनना मना नहीं है, तकवा के खिलाफ नहीं है, उनका भी रोजगार हो जाता है। कई देहातों में बैठी लड़कियां बच्चियां जो अपनी जिंदगी, जिनको और कोई काम करने को नहीं, कोई पढ़ लिख नहीं सकती, कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें बनाती है, लेकिन हम उन पर बड़ा जुल्म ढाते हैं कि बहुत ही औने पौने दामों लेकर उनकी आंखों से और उनके सलाहियतों से मजाक करते हैं। फिर इसी तरह आप देखें, इसमें भी आप देखें कैसा शेड है, इतना खूबसूरत, और इनकी जो नरमी और मुलायमत है, हम भी इतने अकलमंद नहीं कि इतने खूबसूरत कपड़े पहनना जाने। हमारे कपड़े तो खूब अकड़े हुए होते, अनकंफर्टेबल, कि जिसमें सांस ना आए, काम ना कर सके। परिंदों के पर खूबसूरत होने के साथ साथ इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि उनको अपना काम करने में कोई दुश्वारी नहीं होती। हम बाज़ुकात खूबसूरत लिबास पहनने के शौक में बिल्कुल ऐसा लिबास पहन लेते हैं कि जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होता। पढ़ाते वक्त अगर साथ ये भी दिखाया जाए तो थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आती है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या खूबसूरती पैदा की और किसके लिए पैदा की। ये परिंदे इधर उधर उड़ते फिरते, उन बेचारों को तो खुद तो कलर्स पता नहीं अपने नजर भी आते हैं कि नहीं, कि कलर्स देखने की सलाहियत भी इंसान को मिली। हम इंसान एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। हमारी एक्सट्रीम्स क्या है, कि या तो दीन के नाम पे, तकवा के नाम पे हम बिल्कुल बुद्धू बन जाते हैं और दुनिया की किसी चीज से कोई फायदा नहीं उठाना चाहते। मलंग कहलाना दूसरे लफ्जों में नेक कहलाना है। इस्लाम में किसी मलंगी का कोई तसव्वुर नहीं, ये बाद के नजरियात हैं। साधु और भक्षु और मालूम नहीं क्या कुछ। अल्लाह ताला ने अपनी ये तखलीक हमें सिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए पैदा की है। किसके लिए है ये सब कुछ, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे लिए। हमारे लिए क्या, कि हम इससे सबक सीखें। इंसान ने जानवरों से भी बहुत कुछ सीखा है, अपनी हैसियत के अंदर रहते हुए, अपनी शख्सियत के मुताबिक सातर लिबास, खूबसूरत लिबास, हाँ पेंटिंग हो, कढ़ाई हो, मुकेश हो, तिल्ला हो और कुछ और हो जो आपको आता है और मुझे नहीं आता, ये सब कुछ मना नहीं है, लेकिन मौके की मुनासिबत से हुदूद के अंदर रहते हुए और पहली शर्त मानते हुए युवारी सवातेकुम। मालूम नहीं शैतान ने हमें क्यों सुझा दिया कि नंगा होना ज्यादा खूबसूरती है और जिस्म की नुमाइश को खूबसूरती बना दिया, सी थ्रू कपड़े पहनाना ज्यादा अकलमंद कहलाने का सबब समझाया, हालांकि ऐसा नहीं है। सारे जानवरों के लिबास अल्लाह ने खुद ही पहना दिए और वो बेचारे एक ही डिजाइन में रहते हुए दुनिया से चले जाते हैं, जबकि इंसान को एक लिबास नहीं दिया, उसको स्किन कलर दिया जिसके ऊपर हर खूबसूरत चीज नुमाया हो जाती है।